0: का दर्स देख सुख पाया, दुख होमै रोग गया। जो अंधन हृदय नाम ते आवे, सब जन्म तिना का सफल भया। ओए आप तरे सृष्ट सब तारी, सब कुल पी आपार पया। तुद आपे आप उपाया, सब जग तुद आपे वसे कर लया। जन नानक को प्रकृपा धारी, बिख डुबदा काट लया। मलार महला चौथा गुर प्रसादी, अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई।
1: मुख मूर जलत अहंकारी होमै।

बसाई रहा मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण किया चतुराई करो ओम बराबर जो प्रेय संग राति होमै की ठी ठी ठाई पेई न मानी सरन एकता की गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमिक मह मेरा सब दुख काट्या नानक सुख रैन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ की बरस मेघ जी तिल बिलम ना लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मंचाओ रहाओ हम तेरी तर स्वामिया मेरे तुम क्यों मनो बिसारे इस रूप चेरी की ने

ना पीजै सकता दुर्मत्या भंजान, साधु सतगुर जे मिलै ता पाइय गुणी निदान। मन रे होमै छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू पावै दरगै मान रहाओ। राम नाम जप दिन सरात, गुरमुख हर तन जान, सब सुख हर रस भोगणै संत सभा मिल ज्ञान। नितहन सर प्रभ सेवया सतगुर दिया नाम, कूकर कूड कमाई गुरनिंदा पचे पचान। पर मैं भूला दुख कणो जम मार करे खुलहान, मन मुख सुख ना पाई गुरमुख सुख सुभान। एथे तंद पटाई सच लिखत प्रवान।

आओ। ज्योति ज्योत मिलाई है सुरती सुरत संजोग, हिंसा हम गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मिलै गुर संजोग। काया कामण जे करी भोगी भोगन हार, तिस स्यो निहो न की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हार जल पाए, अंतर कमल प्रगासया अमृत भरिया अघाए। नानक सतगुर मीत कर।

सतसंगत हर पाए गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया मिल सल सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेत्यो सो औगण आवै जाए। जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो पहुजल पचे।

रहाओ। सजन मेरे रंग लै जाए सुते जी राण, हम्पी वंजा डुमणी रोवां चीणी बाण। की ना सुने ही गोरी है अपन कन्नी सोए, लगी आवे साहुरे नितना पेये होए। नानक सुती पेये जान विरती सन, गुणा गवाई कंठड़ी अवगुण चली बन।

ना पाईनी कूड़ मुठे कूड़ियार। हाँ मैं करता जगमुआ गुर बिन कोर अंधार, माया मोवे सारिया सुखताता दातार। सतगुर सेवै ता उबरै सच रखे उरतार, कृपा ते हर पाईऐ सच शब्द विचार। सतगुर सेव मन निर्मला होमै तज बेकार, आप छोड़ जीवत मरै गुर कै शब्द विचार। धंधा तावत रह गए लागा सच प्यार, सच रते मुख उजलै तित साचै दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इसनान दान जीता करै।

जोत समाए। ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाए। जिन को पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तिन आए। विण ना वह सब डुमणी दूजे पाए खुआए। तिस बिन घड़ी ना जीव दी दुखी रहन विहाए। भरम भुलाना अंदला फिर आवे जाए। नदर करे प्रभ अपनी आपे लहे मिलाए। सब किश सुनदा वेखदा क्यों मुकर पाया जाए। पापो पाप कमावदे पापे पचे पचाए। सूप

रहाओ। हर एक को दाता वरतदा दूजा आवरना कोय, शब्द सलाही मन वसै सहज ही सुख होय, सब नंदरी अंदर वेखदा जय पावै तै दे। होमै सबा गणत है गणते न सुख नाहे, बिकी कार कमावनी बिख ही माहे समाए। बिन पेरना बिन नावे ठौर ना पायनी, जामपुर बदे जामपुर दुख सहाय। जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार, गुरप्रसादी बुझिया ता पाए मोख द्वार। नानक नाम सलाह तू अंत ना पारावार।

भगत भंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाइए, हर स्यो रहे समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लालतिया, रत्ता सहज सुपाए, गुरसबदी मन मोहया, कहना किशु ना जाए। जिह वारती शब्द सचै, अमृत पीवै रस गुण गाए, गुरमुखे हो रंग पाइय, जिसनु कृपा करे रजाए। संसाय हो संसार है, सुत्या रहन विहाए, अपने भाणे कढ लैन, आपे लयन मिलाए, आपे ही आप मन वस्या, माया मोह चुकाए।

मन मुकंत ना पछाणनी, तिन को रहण विहाय। गर्भटिया तृष्णा चलै, दुख पावै दूजै पाए। सब दृतिया सुहागणी, तिन विचो होमै जाए। सदा फिर रावै अपना, तिना सुखै सुख विहाय। ज्ञान विहूणी फिर मुतिया, फिर न पाया जाए। अज्ञान मती अंधेर है, बिन फिर देखै भुख न जाए। आवो मिलो सहेलियो, मैं फिर देह मिलाए। पूरे भाग सतगुर मिलै, फिर पाया सच समाए। से सहिया सुहागणी, जिनको नदर करे। खसम पछाणे अपना, तन मन आगै दे। घर वार पाया अपना, होमै दूर करे। नानक सुभावंतिया सुहागणी, अंदन भगत करे। श्री राग महला तीजा, एक फिर रावे अपना। हों कै दर पूछो जाए, सतगुर से भी पाओ कर। मैं फिर दे मिलाए, सब उपाय आपे विखै। किस नेड़े किस दूर, जिन फिर संगे जानिया। फिर रावे सदा हदूर, मुंदे तू चल गुर कै पाए। अंधन रावे फिर अपना, सहजे सच समाए। रहाओ सब दृतियां सुहागणी, सच्चे शब्द सिगार। हर वर पाइन कर अपने, गुर कै हेत प्यार।

गवाए। गुर प्रसादी मन बसै मल होमै जाय समाए, ज्यो अंधेरे दीपक बालियै त्यो गुरु ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करे गए हम मूरख गावार, करने वाला विसरया दूजे पाए प्यार। माया जेवड दुख नहीं सब भव तक कै संसार, गुरमती सुख पाई है सच नाम उर तार। जिसनु मिले सो मिले हो तिस बल हारे जाओ, ई मन भगती रत्या सच बाणी निज थाओ।

करे साबास। हो गुर सलाहे न रजऊ मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थिया है भागहीन बहरोए। जो हर प्रभ पाणा सोथिया तुर लिखिया न मेटै कोए। आपे सतगुरे आप हर आपे मेल मिलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलह समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिलै रस खाए। जाय पुसा सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओ वे परवाह न बोलनी हो मल मल धोवा तिन पाए। पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डै हो मैं मार रहाउ। गुरमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए। सतगुर बचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से बड़पागी बड़ जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिण सबत है भागहीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्लै ना पवै मन मुख रहे बिल लाए। ओए सतगुर।

तिस पावे ता लागे पहो परम भुलावा बिचो जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे इत संगत

प्राणी संसार सागर पे अमर पिया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया बिखम कर पंथ चलना प्राणी रब सिस ना परवे संग माया मोह तब विसर गया जा तजियल संसारंग आज मेरे मन प्रगट पिया है पेखी।

को उपदेश करते तबन त्रिन रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब किश जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया। अब कुछ कहने ना जाए सोर नार।

तन बासुफार हाव काया नगर वस्यो कर मंदर जप सुबा गुरमुख कर फुफाव हलत पलत जन पै सुहेलाय मुख उजलाव गुरमुख तरफा

गाया, तितकार सखिए मंगल गाया, आनंद बनोद तितकार सोहे, सो तन कांत संगारी जियो, साबड़ सागुणवंती साबड़ पागन, पत्र बंती सील बंत सुहागन, रूप बंत सासुगड़ बजखण, सो तन कांत प्यारी जियो, अचार बंत साई पर दाने, सब सिगार बने तिस ज्ञाने, साकोल वंती सास बराई, जो पिर के रंग

खोजत खोजत दर्शन चाहे, पात पात बन बन अब गाहे। निर्गुण सारगुण हर हर मेरा कोई है, जियो आन मलावे जियो। खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलख तीर्थ इस नाना। नबली करम आसन चरासी।

जाके हर हर सोई भगते अकाती जियो अमोघ दर्शन ब्यंत अपारा बड़ समरथ सदा दतारा गुरमुख नाम जपिए तित तरी।

पाने हर गुण गुरमुख गवाहा, पाने परम पवे बोजुनी, सब कुछ तिसेर जाई जियो। ना को मूर्ख ना को सियाना, बरते सब किश तेरा पाना। अगम अगोचर ब्यांथे अथाह,

गोविंदे ऊचे अथा ब्यंत स्वामी सिमर सिमर हो जीवा जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथा अतोले अकाल मूरत अजूनी।

सगळ संतन पे बस्त एक मागू करू बनंती मान त्यागो बार बार जाई लख बढ़िया दियो संतन की तूड़ा जियो तुम दाते तुम पुरख बदाते तुम समर्थ

तुम दाते तुम पुरख बदाते, तुद जे बड़े अबरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर मत विनसी को बुद्ध अपागी। सच कर बै

तू संतन की करे प्रीत पाला, संत खेले तुम संग गपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन के मेरा मन करवाने, जिन तू जाता सो तुद मन पाने, तिन के संग सदा सुख पाया, हर रस नानक

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो जियो बारक भीखी रही अकाबे जियो निर तन तन देख सुख पावे त्रिखा बंत जल पीबत ठंडा त्यों हर संग एहो मन पीना जियो जियो जियो अंधियारे जियो अंधियारे दीपक परे गासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतों ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माझ महला पंजमा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बडारन हरिया आबर साध चख सगले देखे मन हर रस सब

परापत जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो, जिन हर रस पाया सो त्रिपति गाना, जिन हर साध पाया सोना हिंडलाना, तिसे परापत हर हर नामा जिस मस्तक पगीठ जियो, हर एक सहत आया बरसाने बथेरे, तिस लग मुकते पै कनेरे, नाम निदाना गुरमुख पाइए, कहो नानक बिरली डिठ जियो, माझ महला पंजवा निद सिद्ध रिद, हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ घैर गंभीरे, लाख खोट खुशियां रंग रवे, जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन पेखत

जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण ते थाई जय सेवका गोपाल गोसाई प्रभ सो प्रसन्न पय गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जाग उर्दव तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करी जा

दे। कतांच माता कतांच पिता कतांच बनिता विनोद सुत है कतांच प्रात मीत हित बंधव कतांच मोह कुटुंबते कतांच चपल मोहनी रूपं पे खंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरण नानक लब्धिंग च्युत तन है। त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है त्रिग स्नेहं बनिता विलास सुत है त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै साध सांग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यांत देहं खीणंत बलनं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अतिथ्य पवनं गणंत स्वासा भयान धर्मं

अंग रचांत तोय अंग लेपनंग रक्त चर्मण है नवांत द्वार अंग पीत रह तंग बाय रूपंग स्तंभन है। गोविंद नामंग नह सिमरांत अज्ञानी जानत अस्थिरंग दुर्लभ देह उदरांत साध शरण नानक। हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभांत तोयंग अच्युत गुण अज्ञंग पूर्णंग बहलो कृपाला गंभीरंग ऊंचाय सर्वाग्य अपारा। प्रत्यय प्रयंग विश्राम चरणंग अनाथ नाथे नानक शरणं।

तजंत लोभं शरण संतं कल विघ्नासं परापतं कर धर्म लख्याणा नानक जेहे सो प्रसन्न माधव है। मेरत मोहं अल्प बुद्धिं रचंत बनिता विनोद साहं जौबन बहक्रम कनक कुंडल है बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापितं। हे अच्युत शरण संत नानक पोहो भगवान हय नम हय जन्मंग तमरणं हरखंग तसोगं भोगंग तरोगं ऊचंग तनीचंग नाना समूचंग राजंग तमानं अभिमानं तहीनं प्रवृत्त मार्गं वर्तांत विनाशनं गोविंद भजन सार संगेण अस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं। किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं विगसीद्य बुद्धा कुशल थानं बस्यांतरिक्षं त्याग मानं शीतलांत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहांत जन्म।

फल पंडित है। कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम तहरणी, जीह पहाड़ जो उत्तम श्लोक, उदरण नैन नंदनी, गुरमंत्रहीण से जो प्राणी, त्रिघंत जन प्रश्न है, कुकर है शूक्र है गर्दभ है कक है सर्पण है तोलखल है चरण।

सत्रंग दृढ़ांत अनेक माया बिस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वह भोगण है। भ्रम भयान उद्यान रमणंग महाबिकट असाध रोगण है।

सहकं तत हरियं भूडं ततरियं ऊणं तपरियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हार गोर दयारं। ब्राह्मण है सांग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्व जीयक है। लौ लई तृष्णा अतिपत मन माए कर्म करत से सुकर है मते समेव चरणं उदरणं पैद उतर है अनेक पातक हरणं नानक साध संगम न संशय है। महला पांचवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मड़ीरं मजा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानण परमाणो परजांत्या काश है दीप लू सिखंडन है गछेण नैन पहारेण नानक बिना साधु न सिद्ध्यते। जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीरत साथ चलंथो पणंत नानक सार संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव है लब्ध्यं सार संगेण नानक सुख स्थान गोपाल भजनं मैं लागर संगेण निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध न बोहते। गाथा गोम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन है हतं पंच सत्रेण नानक हर बाणे प्रहारण है। बचन साध मुख बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमणं नानक हर कीर्तन है।

है। मरणं विसरण गोविंद है, जीवनं हर नाम त्यावण है, लभणं सार संगेण नानक हर पूर्व लिखण है। दसन बिहून भुयंगं मंत्र गारुड़ निवारं, ब्याह देव पाड़न संतं नानक लब्ध कर्मण है। जाथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जीयण है, तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है। चरणारविंद मन विद्धं विद्यं, चरणारविंद मन विद्यं सिद्धं सर्व कुशलण है। गाथा गावंत नानक पव्यं पर पूर्वण है, शुभ वचन रमणं गवणं सार संगीण उदरणं उदरण है। संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उतारं, कुरह समूह सगल उदारं बड़ भागी नानक को तारं। सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कोल समूहण है, लब्ध्यं सार संगेण नानक बड़ भागी भेट अंत दर्शन है। सर्व दुख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण है, लब्धेन सार संगेण नानक मस्तक लिखण है। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण है, साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणं। सुखेण बैण रतनं रचनं कसुंभ रंगण है, रोग सोग वियोगं नानक सुख न सुपन है। फुन है महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलाम गम मस्तक लेखावते, उर्ज रहो सब संग अनुप्रो पावते। उस्तत कहन न जाय मुख हो तुहारिया, मोहि देख दर्श नानक बलिहारिया।

एक दुख नसना भासाओ संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हर दि सिद्ध नव निद बस है जिस सदाकार पारत्र्य रावण जाहे सेई तालाजी है नित प्रत हिर पर दर्ब छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारे हर हां सुनते पहे पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तलत हर सोहते दह दिस चमके बीजुल मुख कौ जोहते खोजत फिराओ विदेश पियो कत पाई हर हां जे मस्तक होवे भाग त दर्श समाई है डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया बदो हो पुरख विधाता है ता तू सोहया वस

कारणे पांच सताव है दूत कवन विद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रभ पाइय नाम प्रभ तिहाइय हर हां महाबिखा देखात पूरन गुर पाइय सतगुर कीनी दात मूल नानक खुटई खावहो पहुंचहो सब गुरमुख छुटई।

कबीर डगमग क्या कर है कहा डुला वह जियो सर्व सुख को नाय को राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ दिसै दादे कान ज्यों जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए निरपय होए कै गुण रवै जत पे खाओ तत सोए। कबीर जादन हो मुआ पाछै भया आनंद मोहे मिलो प्रभ अपन आपना संगी पजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम ताज भलो सब कोय जेने ऐसा कर बुझया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पहे अनेक करे कर भेस हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सो

बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया, इो मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसाए, बांस सुगंध न होए।

रतन तब पाई है जो पहले तजे शरीर। कबीर चंख न चंखी है तुमरो कहो न खोय, राम कसौटी सो सह कहो न कोय, कर्म करीम जो कर रहे मेट न सके कोय। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होय। कबीर उजल पै रह का परे पान सुपारी खाहे, एक सर के नाम बिन बादे जंपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पहार। कबीर हाड़ जरे ज्यो लाकरी केस, जरे ज्यो कास, एहो जग जरता देख कै पहो कबीर उदास। कबीर गर्भ न कीजिए चामल पेटे हाड़, हैवर ऊपर छतर तार ते फुन तरनी गाड़। कबीर गर्भ न कीजिए ऊंचा देखे अबास, आज काल पोहे लेटना।

कबीर ने गुसाए बह गए थांगी नाही कोय, दीन गरीबी अपनी करते होए सोए। कबीर बैसनों की कुकर पली साकत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस ओह पाप विसाहन जाए।

कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछ लागो हर फिर कहत कबीर कबीर कबीर हर दी पिय।

कबीर साथ समुंद है मस कराओ कलम कराओ बन राय बसुदा कागद जो कराओ हर जस लिखन ना जाए कबीर जात जुलाहा क्या कर हृदय बसे गोपाल कबीर रमैया कंठ मेल चूखे सर्वजंजाल कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए पंचौ लरके मार कै रह राम से उलाए रह राम ले उलाए कबीर ऐसा को नहीं हो तन देव फूक अंधा लोग राजा नहीं रहो कबीरा कूक कबीर सती पुकार चेह

आए, जो जैसी संगत मिला सो तैसो फल खाए। कबीर जा कौ खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा कौ कहता और। कबीर मारी मरो को संग की केले निकट जो बेर, ओ चूल ओ चीरिया साकत संग न हेर। कबीर पहार पराई सिर चरै, चलियो चाहे बाट आपने पार है ना डरै, आगे औकट घाट। कबीर बन के

पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अबै कर अब करता सोयताल, पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवै काल। कबीर ऐसा जंत एक देखे आ जैसी तोही लाख।

कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए दफ्तर लेखा निक से मार मुहे मुखाई कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़े कोई कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी अबद घट खट दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तू

के खाई। कबीर जो तो साध परम की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किछ होता होए। कबीर जो तो साध परम की पाके सेती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंधगत अर चिन्हत नाही संत, कहना मां क्यों पाई है बिन भगतों भगवंत।

ढंज हंस उडर कोदरै पया लोक विडारण जाए गैला लोक न जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चलसी थके कवल एकल।

करी। सबर अंदर साबरी तन एवै जाले न होन नजीक खुदाए दे पेहत न किसे देन। सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ करें वध थीवें दरियाओ टुटना थीवें वाखड़ा। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी परीत एकन किने चाली है दरवे सावी रीत।

कर आननाहि समसर उजियारो निर्मर कोट परा छत जागे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बले हर सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे ओ सर्व मैं आप है निरारे।

सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर सुमरार तहता दृढ़ नाम अपार बिमल जास बिथार साधिक सिद्ध सुजान जिया को आधार तूता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगतर जलपद विचार कालिप तर रोग बेदार संसार तापने वार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तहता हदरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साधे अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकल गत गुर प्रवान जाकी दृष्टि अचल ठाण बिमल बुद्ध सुथान पहर सीर सनाहो सख्त बेदार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहण जगतर गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम्यर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण सरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लग सो पैतर गौर जागत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकाल लिव रहै करण से इच्छा चार है द्रोम सपूर जो नवै खवै कस बिमल भीचार है एह तत् जाण्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी

दर्शन परसै गुरु कै, अठ सठ मजन होय, सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच, सदा सच पाखंत सो है, सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बहु है, जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल बखान, दर्शन परसै गुरु कै, सच जन्म परवान, अमय दृष्ट सब करै हर अग पाप सकल माल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सब बाल, सदा सुख मन बसै।

चरण चित्त अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत, सतकर संगत उदरिया, सोई नाम छल भगत है पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया। नाम कित संसार किरण सरब सुर तर साख है, उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पख है, जन्म तह सके अथ जित नाम हर हृदय निवस है, सुर नर गण गंधर्व छय दर्शन आसस है, पलो प्रसिद्ध ते ज्योतना कल जोर कर त्यो, सोई नाम भगत भव जल हरण, गुरे अमरदास तह पायो। नाम त्याव है देव ते तीसर साधिक सिद्ध नार, नाम खंड ब्रह्मांड तारे, जह नाम समाध्यो हरख सोग सम कर सहारे, नाम सरोमण सर

संतोख पेख दर्शन गुर सिख है, सरण परहे ते उबर है, छोड़ जमपुर की लिख है, भक्त पाए भरपूर हृदय उचर करतार, गुर गौहर दरियाओ पलक डुबंत तार, नानक कुल निमल अवतर गुण करतार उचर, गुर अमरदास जिन सेव्यो तिन दुख दरिद्र पर हर पर, चित चितवा वरदास कहो पर कह भे न साको, सर्व चिंत तुझ पास सार संगत हो तकाओ, तेरे हुक्म पवै निशान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दिष्ट।

जागत उदाहरण नव निधान भक्त है भवतारण अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बड़ भागे।

सेज सदा सहज छावाण संतोख सराय चौ सदा सील सनाहो सो है गुर शब्द समाचर्यो नाम एक संगाद बहु है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उच्चर तो सहज सरोवर बास गुर जन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जन को गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नस गुर जन को सो प्रसन्न मान विमान निवार जन को गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जल

भव सागर बंध्यो सिख तारे सो प्रसन्न सरिया तपत सचौ तख्त जोग भोग संजुक्त बल गुर रामदास सच सल्य पाण तू अटल राह।

जग उदरिया सतगुर हृदय बसाया गुरे अर्जुन कल चर तै जन कह कलस दिपायो सोरठे गुरे अर्जुन पुरख प्रमाण पारथाओ चाल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार भव जल सायर सहित नाम हरि का बोहिथा तो सतगुर संहेत नाम लग जग उदरियो जगत उदारण नाम सतगुर तुठ पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तात अंगद भयो तत्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर नाम दास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण कहे मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरे अर्जुन पिखाओ नयण सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आदि पुरख पर तख लिखियो अछार मस्तक थोर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छाया पारस परस परस परस गुर गुरु कहाय पान मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासर रहन बास जा कोहित नाम से हो परम तीत परमेश्वर के रंग रंगे हो बासना ते बाहर पै देखियत ताम से हो अपर परंपर पुरख से हो प्रेम लाग्य हो बिन भगवंत रस नाही और काम से हो मथुरा को प्रभ श्रभ मैं अर्जुन गुर भगत कहे तो पाए रहे हो मिल राम से हो अंत न पावत देव सवै मोन इंद्र महाशिव जोग करी फोन भेद बिरंच विचार रहे हो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन का गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार्यो जग रयान कियाओ तिनके दुखद कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत ना पियाओ एह पद्धत ते मत जू कह रे मान भेद बिभेद न जान बिया परता चिरदय गुर अर्जुन।

काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदार नाम बस है संत जस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान बच जिन जानयो भयो ते संसर सोई तारण गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूप रहयो पार पहन मथुरा कछ भेद नही गुरे अर्जुन प्रतख हार अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ठुले नाम अमृत मुख लिया गुरे अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियाओ मिल नानक अंग दे अमर गोर गुर रामदास हर पह गया हर वंश जगत जस संचरयो सुकवन कह श्री गुर मोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर भायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंप है काटे सो पाप तिन नरहो के गुर रामदास जन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गोरे अर्जुन का।

कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एका नदर निहाल, नानक गुरमुख बरे गुर सरवर सची पाल। अगन मरे जल लोड लहा वेण गुर निध जल नाहे, जन्म रह परमाइय जे लख कर्म कमाहे। जाम जागात न लग गई जे